सेवा संगत पूपन कला होंडा आलम चंद है सैसारा तलवाड़ सुखला जगनानंदा साध है भानु सूढ़ हंसा दी ढाला गुर भाई रतना दी माला जगनानंदा साध है भानु सूढ़ हंसा दी ढाला गुर भाई रतना दी माला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक बाणी के बोहित गुरु ग्रीन निवास सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा हुई है। गुरु चरणा की हाजरी भरदिया हुए हैं पातशाह जी की अमृतमयी बाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया है। उपरंत समा होया है भाई गुरदास जी दियां वारां दी जो लड़ीवार विचार चल रही है। मैता सकतू आगरे चिड़ा होवा निहाल निहाला। आगरे दी संगत दी कथा है। आपां सारे जानते हैं आगरे दा वो स्थान जिथे पहले गुरु साहिबाना दे समय तो ही सिखी दा वासा सी। इतिहास दी कथा है पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इत्थे अपने मुबारक चरण पाए सन। उपरंत मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दा भी इत्थे ओ पावन अस्थान है जिथे सतगुरु जी ने अपने मुबारक चरण पौने किते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की प्रथाए तां ये लिखिया होया है कि शहीदी दे समय उन्हां दी जो गिरफ्तारी है वो आगरे तो ही होनी कीती सी, जिसनों गुरु का ताल आखते हैं वो पावन।

ओंकार असंख जाप असंख पाओ संख पूजा संत बताओ संघ ग्रंथ मगवेद पाठ असंख योग मन रे उदास संघ भगत गुण ज्ञान विचार।

ओंकार असंख नाव शंख ताव अगम अगम असंखलो असंख सर्वार हुए अखरी नाम करी सालाय अखरी ज्ञान गीत गुण गाय अखरी रखण मुदन बाण करा सत्संजो बखान जिने लिखे दसरणाहे ने बरमाए तुम ते पाहे ने।

कृति है, के क्षत्रं क्षत्रिय है, के ब्रह्मं स्वरूप है, के अनुपानुप है, के आद देव है, के आप भीम है, के चित्रं बहिं है, के काधीन है, करो धीर जाकर मैं रहा, के पापी अभ के कवलोक अभ के अफलो गुनाह, के शाहन शाह के कारण कुनिंद, के रोजी ध्यान, के राज करहीम है, के कर्मं करीम है, के सर्वं कली है, के सर्वं दली है, के सर्वत्र मान्या, के सर्वत्र दान्या, के सर्वत्र गौने, के सर्वत्र बौने, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र बेसा, के सर्वत्र राजा, के सर्वत्र साजा, के सर्वत्र दीना, के सर्वत्र अनीना, के सर्वत्र जाहु, के सर्वत्र बाहु, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र बेसा, के सर्वत्र काला, के सर्वत्र पाला, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज, के सर्वत्र राज, के सर्वत्र सुख, के सर्वत्र भूख, के सर्वत्र त्राण, के सर्वत्र प्राण, के सर्वत्र देसा, के सर्वत्र पेशा, के सर्वत्र मान्या, सदा प्रदान्या, के सर्वत्र जापया, के सर्वत्र थापया, के सर्वत्र पान, के सर्वत्र मान, के सर्वत्र इंद्र, के सर्वत्र चंद्र, के सर्वं कलिंग, के परमं फहिम, के आकल अलम, के साहेब कलम, के उसनल वजू है, तमाम रजू है, हमेशा सलाम, सलीख मदम, गनीम और शिकश

तेरंगी अनाभे सर्वंगी सरका में सर्वंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे ना पुत्रा न मुत्रा न सुत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता

समस्त निवासी अजाए बाब भूते गजाए बा गनी में हरियं करियं करिम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुअंब सुबंग सर्वदा सर्वजुगते सर्व।

रसना नाम जपहो तब मथिया इन विद अमृत पावहो मन संपट जित सत सरनावण पावन पति तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह कहंदे कहें कहे कह जावहें